0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से

जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक की पंथी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रसार भारती सुरू केला आपलो नवो OTT प्लॅटफॉर्म वेव्स।
4: वेव्स
3: हातून तुमका विनामूल्य मेळटात
4: मूवीज, शोज, सिरियल्स, ऑडिओ गेम्स, लाईव्ह इव्हेंट्स आणि खूप किदे।
3: तर करात बेगोबेग डाउनलोड
4: वेव्स अँड्रॉइड प्ले स्टोर तसेच ॲपल iOS वेल्यान।
3: वेव्स तुमच्या मनोरंजनाची शानदार हमी।
4: वेव्स

0: गरजेचें आशिल्लें.
1: की पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए. गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो. सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया.
0: फास्ट ट्रॅक कोर्टा खातीर प्रस्ताव तयार करपा खातीर संबंधित खात्यांक आपणे काल निर्देश दिल्ल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. खात्यांनी अविरत काम करून काल राती उसरा मसुदो सादर केल्ल्याचे तांणी म्हळें. सामाजिक वावुरपी सोनम वांगचुकान काल राती गुरुग्रामांतल्या एका खासगी हॉस्पिटलांत केंद्रीय मंत्री JP नड्डा आनी जितेंद्र सिंग हांच्या हजेरेन आपले 26 दिसांचे उपोशण फाटीं घेतलें.

0: मगाएको पनि आइक्विया डेली हाइलाइट्स अफ ग्लासको कमनवेल्थ गेम्स 2026।
1: Court will hear cases registered under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024 along with the connected offences. Ms. Balika, who was serving as the judge in charge of the mediation center at 30 Hazari Courts, has been transferred to the Ross Avenue Courts to head the specially designated court. The initiative is aimed at ensuring expeditious adjudication of cases involving the use of unfair means in public examinations. The notification was issued hours after Prime Minister Narendra Modi announced the center's decision to establish fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in examination paper leaks. Rohan for Akashwani News, Delhi.
2: और तन्वी, सुरक्षा कारणों के कारण दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। तो जो भी आपको ऑफिस जाने वाले लोग
3: 2026 में केवल सिंगल्स यानी एकल वर्ग और पेयर्स यानी युगल वर्ग को जगह मिली है। साथ के साथ इस बार बाहर नेचुरल ग्रास के बजाय ये खेल इंडोर्स यानी अरीना के अंदर कारपेट वाली घास पर खेला जाएगा। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद है। खिलाड़ियों ने एक हफ्ता पहले ही वेन्यू पर पहुंच जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी थी और बता रहे हैं टीम के सदस्य नवनीत सिंह।
4: It's a different format that the Commonwealth Games hosted for this year in the 2026 Birmingham was a grass green and this Glasgow is indoor carpet. So we are going a few weeks ahead of the games in Britain for the same to practice on that. So definitely that's going to help us to get us a little better and give us advantage over the new format and play our best with the very high quality players in Glasgow.
5: उसका असर देखने को मिला। विमेन पेयर रूपा रानी तिर्की और पिंकी की जोड़ी ने माल्टा को रोमांचक मुकाबले में हराकर जीत के साथ अभियान की शुरुआत की है।
3: दोनों टीमों ने एक एक सेट जीता जिसके बाद टाई ब्रेकर में भारतीय जोड़ी ने बाजी मारी। इनका अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा। तो वहीं मेन सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल ने मौजूदा आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन कनाडा के रायन बेस्टर को हराया और अगले दौर में प्रवेश पा लिया। उनका अगला मुकाबला फॉकलैंड आइलैंड्स के सिसिल अलेक्जेंडर से शुक्रवार 24 जुलाई को होगा। पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीदें भारतीय प्रशंसकों को एथलेटिक्स में हैं, जिसमें सबसे आगे नाम है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोट के चलते 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे और पिछले साल हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ नीरज ने किसी इवेंट में टॉप 2 में फिनिश नहीं किया। लेकिन इस सीजन में दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर दूर अपना भाला फेंक नीरज ने यह दिखाया कि जीत की भूख उनमें अभी भी बरकरार है।
6: नहीं, मैं काफी खुश हूं अपने प्रदर्शन से क्योंकि मैं इंजरी से आ रहा था और काफी टाइम बाद मैं कंपटीशन खेल रहा, तो मैं काफी खुश हूं अपनी परफॉर्मेंस से। और ये इस साल का पहला कंपटीशन था और अभी तो पूरा सीजन बाकी है, तो आशा है कि और अच्छी थ्रो देखने को मिलेगी।
3: हालांकि जैवलिन थ्रो में कॉम्पिटिशन भी उतना ही तीव्र है। नीरज के आर्च राइवल माने जाने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पिछले संस्करण में 90.18 मीटर की दूरी तय कर गोल्ड मेडल जीता था, जिसको बचाने के लिए वो मैदान पर उतरेंगे। दूसरी तरफ श्रीलंका के रुमेश पाथिरागे, जिनके नाम 92.62 मीटर की दूरी तय करने का रिकॉर्ड है, वो भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को तो भूलिएगा मत, जिन्होंने 2022 में दोहा डायमंड

0: लीग में 93.07 मीटर की दूरी तय कर कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड स्थापित किया था।
1: दूसरा बड़ा नाम है मुरली श्री शंकर। बर्मिंगम 2022 लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता था, लेकिन करियर थ्रेटनिंग इंजरी के चलते इन्हें 2024 का पेरिस ओलंपिक्स मिस करना पड़ा था। लेकिन मुरली श्री शंकर ने चोट से उभर कर मजबूत वापसी की और अब ग्लासगो में दावेदारी पेश करने के लिए तैयार है।
0: लॉन्ग जंप के अलावा हाई जंप में सर्वेश कुसारे ने हाल ही में 2.3 मीटर की ऊंची कूद लगा नेशनल रिकॉर्ड सेट किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उनसे भी पदक की उम्मीदें हैं।
1: साथ ही दिखेंगे तेजस्विन शंकर। हाई जंप में भारत का पहला मेडल 2022 बर्मिंगम में इन्होंने जिताया था
0: और इस वर्ष ये डेकेथलॉन में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। वहीं ट्रिपल जंप में नजरें होंगी एक और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर पर, प्रवीण चित्रवेल, जो कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे स्थान पर आए थे, यानी पदक जीतते जीतते रह गए थे। 2018 के खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में पहली बार इन पर नजरें गई थी, जिसके बाद एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में ये पदक जीत चुके हैं। क्या इस बार कॉमनवेल्थ में भी ये पदक विजेता बनेंगे? वहीं 100 मीटर की दौड़ में नजरें होंगी 10.09 सेकंड में दौड़ पूरी करने वाले नेशनल रिकॉर्ड होल्डर मॉडर्न फ्लाइंग सिख गुरिंदर वीर सिंह पर।
1: नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स की बात चली है तो 200 मीटर में आप अनिमेश कुजूर को देखना मत भूलिएगा। महिलाओं में नजरें होंगी पारुल चौधरी पर। 2023 हांगचाओ एशियन गेम्स में इन्होंने 5000 मीटर की दौड़ और 3000 मीटर की स्टीपल चेस में भी स्वर्ण पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ये भारत का प्रतिनिधित्व करती 3000 मीटर स्टीपल चेस में नजर आएंगी।
0: लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में गुलवीर सिंह पुरुषों की 10000 मीटर और 5000 मीटर, वो दोनों इवेंट्स जिसमें वो मौजूदा एशियन चैंपियन हैं, अपनी दावेदारी पेश करेंगे।
1: अब बात प्रियंका गोस्वामी की, पहली भारतीय महिला जिन्होंने रेस वॉक में भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जितवाया था।
0: पोल वॉल्ट में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर देव मीना और कुलदीप कुमार पर भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होंगी।
1: शॉर्ट पुट में दो बार एशियन गेम्स चैंपियन बन चुके तजिंदर पाल तूर प्रबल दावेदारी पेश करते नजर आएंगे।
0: ये तो बात रही एथलेटिक्स की, अब रुख करते हैं बॉक्सिंग का।
1: मिडिल वेट कैटेगरी में लवलीना का मेडल तो सुनिश्चित है ही, पर फेदर वेट कैटेगरी में उम्मीदें जैस्मिन लंबोरिया से भी कुछ कम नहीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप दोनों में ही जैस्मिन के नाम गोल्ड मेडल है और 2023 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल है।
0: दो बार की वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी भी 51 किलोग्राम भार वर्ग में अपना कॉमनवेल्थ डेब्यू करने के लिए तैयार हैं।
1: पुरुषों में 55 किलोग्राम भार वर्ग में अपना कॉमनवेल्थ डेब्यू कर रहे जादूमणि सिंह भारत का परचम लहराने का ख्वाब लिए रिंग में उतरे।

0: जिम्नास्टिक्स के टीम इवेंट और इंडिविजुअल इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड खेले जाएंगे, जिसमें तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वर नाथ दास और योगेश्वर सिंह भारत की तरफ से शिरकत करते हुए नजर आएंगे।
1: फिर दोपहर 3:40 पर शुरू होगा।

0: A para swimming men's S1300 meter freestyle जहां दिखेंगे रवि वीरा वेंकटा, भवानी कार्तिक और इमाम अली।
1: पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में श्रीहरि नटराज के प्रदर्शन पर नजर रखिएगा।
0: पैरा पावर लिफ्टिंग पुरुषों में मेडल इवेंट्स में अशोक और परमजीत कुमार नजर आएंगे।
1: तो वहीं महिलाओं में पैरा पावर लिफ्टिंग में पदक लाने की उम्मीद होगी सुमन देवी और जसप्रीत कौर से। रात 10 बजे के करीब इसी इवेंट का फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। लॉन बॉल्स में आज जीत हासिल करने वाली पिंकी और रूपा रानी तिर्की की जोड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लोहा लेती नजर आएगी। तो वहीं मेन सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल फॉकलैंड आइलैंड्स के सिसिल अलेक्जेंडर से भिड़ेंगे। ये तो बात रही लाइटवेट कैटेगरी की। हैवीवेट कैटेगरी में महिलाओं में कस्तूरी राजमणि और पुरुषों में सुधीर और झंडू कुमार नजर आएंगे।
0: बॉक्सिंग में पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह स्कॉटलैंड के एरन कलन से मुकाबला करते नजर आएंगे रात 11 बजे।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 74 देशों और क्षेत्रों से लगभग 3000 खिलाड़ी 10 खेलों में 215 स्वर्ण पदकों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जहां एक तरफ पदकों की गिनती होगी, वहां भारत अपने खिलाड़ियों के साहस, संकल्प और सपनों की कहानी भी लिखेगा। हर जीत तिरंगे का मान बढ़ाएगी, हर चुनौती नए विश्वास को जन्म देगी और जब खेलों का ये महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, तब उम्मीद यही होगी कि दुनिया भारत की उपलब्धियों को याद रखे। तिरंगा सबसे ऊंचा लहराए और राष्ट्रगान की गूंज हर भारतीय के हृदय में गर्व का एक नया इतिहास लिख जाए। आकाशवाणी पर लगातार आप कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी।
0: प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ प्रेरणा और दर्पण की खास रिपोर्ट।
2: अभी आप सुन रहे थे डेली हाइलाइट्स।
3: मग आयकपण तुम्ही आताच ऐकताली डेली हायलायट्स ऑफ ग्लास्को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 हाचेर दिल्लीच्यान दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्लो हो रिपोर्ट आनी तुमच्या सांगाताक आशिल्ली नमस्कार गोवा ही कार्यावळ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
5: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम

0: उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
0: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बात जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: इस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से

0: ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुकारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
3: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं के पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल।

0: पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। दो साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच दो वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सदाबहार ह्या गीतांच्या कार्यावळीन आता घेऊया एक लहानसो ब्रेक.
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान. जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान.
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते. टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते. जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार.
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है. आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं.
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
4: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं. आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो.
5: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
6: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है.
7: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
8: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है.
9: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क.
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं. तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे.
10: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें. नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
3: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है.

0: रुपयाची बचत झाली. आजच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करून आयुष्मान कार्ड तयार करा. अधिक माहिती खातीर 1-4-5-5-5 नंबरवर कॉल करा.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे.
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें. PM सूर्य घर .gov.in पर.

0: लौकी से जो परसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

पढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
4: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
5: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
6: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
7: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
8: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
9: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सुमार 60 कोटी लोक 5 लाख रुपया मेरेन फुकट उपचाराचे हकदार झाल्यात. आता मेरेन 12 कोटी परस चोड मुफत उपचार केल्यात, जाका लागून गरीब कुटुंबाच्या उपचार खर्चांत सुमार 2 लाख कोटी रुपयाची बचत झाल्या. आयजूच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करून आयुष्मान कार्ड तयार करा. अधिक माहिती खातीर 1455 नंबरार कॉल करा.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे.
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें. PM सूर्य घर .gov.in पर.

0: श्रोते हो, याबरोबरच मराठी गीतांचा हा कार्यक्रम इथंच समाप्त होत आहे. आता बरोबर 11 वाजता ऐकूया हिंदीतून बातम्या, ज्या आम्ही दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित करीत आहोत.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं. दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए. प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे. विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया. फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा.
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है. इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है. सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों के चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचुक को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया. प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक

से अपील की है कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपना वजन सामान्य करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। चेन्नई के पास मदुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुदुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण यह दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया की संसद जाएंगे और सेनेट के अध्यक्ष मिर्चा अब्रुदयान और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष सोरिन ग्रिदेनू से मुलाकात करेंगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशाल वाहक लवलीना बोरगोहाइन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगा लहराते हुए अरेना में प्रवेश किया। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान है। आज कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, माहे और तेलंगाना में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ऐकूबेनहो, या वेळार तुम्ही ऐकतात सुगम संगीताची ही कार्यावळ. कार्यावळीनं आता घेऊया हुलांचंच विसव.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं. आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो.
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है.
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है.
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क.
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे.
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें. नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
8: जन जन का रखे ध्यान, TB मुक्त भारत अभियान. जन जन का रखे ध्यान, TB मुक्त भारत अभियान.
9: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते. TB रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते. जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और TB की हार.
10: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में TB के मरीजों की बहुत मदद की है. आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर TB के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं.
9: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
11: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा. वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है. मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है. इस बार तो लगवा ही देता हूँ. जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
4: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
5: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
6: मेरे वाले में

0: निडलिया इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
1: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
2: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सुमार 60 कोटी लोक 5 लाख रुपया मेरेन फुकट उपचाराचे हकदार झाल्यात. आता मेरेन 12 कोटी परस चोड मुफत उपचार केल्यात, जाका लागून गरीब कुटुंबाच्या उपचार खर्चांत सुमार 2 लाख कोटी रुपयाची बचत झाल्या. आयजूच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करून आयुष्मान कार्ड तयार करा. अधिक माहिती खातीर 1455 नंबरार कॉल करा.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा.
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
3: हर घर सूर्य घर.
4: जय अब गरीबों की जय बन गई है.

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुई

0: चार भेजा है। लिखते हैं,
1: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्मविकास में बाधा बन सकता है।
0: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: पुराना तालाब डुमराव से वली उल्लाह अंसारी जी,
0: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
1: भिलाई छत्तीसगढ़

0: और ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
1: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
0: श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
1: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की। आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
0: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
1: जी।
0: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
1: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं। भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है। तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
0: श्रोताओ, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
1: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
0: श्रोताओ, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
1: जी।
0: इसकी पंखुड़ियाँ तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
1: जी।
0: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
1: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
0: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है
1: जी।
0: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी
1: जी।
0: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
1: कैल पौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
0: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
1: कैलपोध उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
0: श्रोताओं, कैलपोध उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
1: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहाँ हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपोध उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कैलपोध उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
0: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास

0: एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
1: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
0: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
1: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
2: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ। और तुम?
1: मैं क्योटो जा रहा हूँ।
0: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
1: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए, हैं? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
2: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
1: भाई वाह।
2: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
1: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
2: अच्छा,
1: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
2: वाह,
1: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
2: हाँ, ये तो है।
0: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
1: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
2: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
1: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
2: आई, वो कैसे?
1: अरे भाई, मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
2: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
1: वो कैसे?
2: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाएं। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
1: भाई वाह।
0: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
1: बड़ा ऊंचा पहाड़ है। पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
2: ये तो है। चढ़ते रहो, चढ़ते

0: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी।
1: हाँ
0: चलो पहुँचे तो सही।
1: हाँ वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
2: हैं?
1: हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
0: हाँ, मैं क्योटो देखूंगा
1: और मैं ओसाका।
0: क्यों नहीं, चलो
1: चलो।
3: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था।
4: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
1: आ, चलो
4: संभल कर।
1: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।
0: बचे।
3: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
4: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
1: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
0: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
1: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
4: हाँ चलो।
3: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
5: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
6: आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: बात मुरव्वत इंसानियत की नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
1: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है?
0: देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूँ। इस बुढ़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि इनकी टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
0: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
1: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
0: नमक का मोल पूछने।
2: आइए आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है,
0: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
2: जी, फरमाइए।
0: अब आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
0: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
2: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
0: अब जी, ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
2: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। पर हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
0: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: आप
2: लीजिए जनाब,
1: अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: हाँ ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: आप भी इधर आइए, आइए सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ जी,
4: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
4: माफ कीजिए, चाय पियेंगे क्या आप?
0: नहीं,
4: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
4: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के

0: उस्ताद नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं, हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है, किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ यहाँ दिल में है, दिल में।
1: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
0: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
1: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तथा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत हुई। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही।
1: लगभग दो घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: सीजेपी के प्रतिनिधि आशुतोष रांका ने कहा कि बातचीत अभी आगे भी होगी।
2: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय

0: सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज संसद भवन में केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में इस समय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा हुई, आज अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इकोनॉमी है, फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना। मैं दोनों स्कीम्स पे, दोनों पॉइंट्स पे आता हूँ। पहला प्रोजेक्ट है जो कि अगर आप देखें कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली ये लाइन बेसिकली गुंतकल से बिल्लारी से होसपेट, होसपेट से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ, अगर इस रूट को देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर लगातार पांचवें दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दूसरे स्थगन के बाद राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में और संशोधन करना है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: With the news that just got relayed from our station in New Delhi, the news in Hindi, the time is 4:05. And it's now time for the request show. So whether it's through SMS, whether it's through WhatsApp, the number that you need to send a message to is 817. I'm sorry, just a moment. And to kick off the request show, it's John DeCunha from Shiroda who requests the song 10 Guitars by Engelbert and also Killing Me Softly with Her Song by Perry Como. Well, John, I don't have the song by Perry Como, but I will definitely pay you the one by Roberta Flack. So here goes. 10 Guitars, kicking off by Engelbert.

0: नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज आल्तीनो पणजी हांगा कारखाने आनी बाष्प निरीक्षक खात्याच्या अपरांत सुरक्षा भवन ह्या नव्या कार्यालय इमारतीचे उक्तावण केले. गोंय राज्य मुळाव्यो सुविधा विकास महामंडळान 13.53 कोटी रुपया खर्च करून इमारतीचे बांदकाम केला. गोंयान बेगीनूच ऑक्युपेशनल सेफ्टी डॉक्टर अभ्यासक्रम सुरू करतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. फार्मास्युटिकल अभियांत्रिकी लॉजिस्टीक अन्न प्रक्रिया तशेंच हेर मळावेले जागतीक पावड्यावेले उद्देजक गोंयांत तांचे उद्देग सुरू करपाक पयली पसंती दितात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. अंदू वर्सा पावस उणो जालो आसलो तरी गोंयच्या धरण आनी हेर सुवातांनी पुरो तितलो उदका सांठो आसा अशें शिंपटावळ मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी आयज मडगांव हांगा एके कार्यावळींत उलयतना सांगलां. टॅरी म्हळ्यार द एनर्जी अँड रिसोर्सीस इन्स्टिट्यूट ह्या संस्थेन आयोजीत केल्ल्या ग्रीन ऑलिंपियाड 2026 हे पर्यावरण विशया वयले सर्ती खातीरची नोंदणी प्रक्रिया सुरू जाल्या. हे सर्ती खातीर नोंदणीची निमणी तारीख 31 जुलय अशी आसा. समाज कल्याण संचालनालयान ज्येष्ठ नागरीक सन्मान येवजणे खातीर अर्ज मागयल्यात. अर्ज स्विकारपाची निमणी तारीख 7 ऑगस्ट 2026 सांजे 3 वरां मेरेन आसा. आदिवासी कल्याण संचालनालयान आदिवासी समुदायांक सक्षम करपाचो वापर करपाक धरती आभा सुविधा केंद्र स्थापन करपा खातीर सोसायटी नोंदणी कायदो 1860 खाला नोंदणीकृत बिगर संस्कारी सरकारी संस्था वा सक्षम प्राधिकरणा कडेन
1: नोंदणी. समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा.
0: एडवाइजरी जारी केल्या आणि सुरक्षा उपाय आणि काळजी घेऊन
1: पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी. संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई. सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है. श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा. इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है.
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं. हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा. अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है. हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए इस पे ध्यान देना चाहिए.
1: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया.
3: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए. उनकी बातें हमने सुनी. बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई.
1: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है.
4: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी उनसे सरकार पॉजिटिव है.
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई. राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया. विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी. हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी. उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली. इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है. मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकाल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
5: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को

0: एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: जी हाँ दोस्तों, सप्तरंज है सप्तरंगी समीक्षा 5.4 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो। शुक्र जी सांस सस्ता रेनबो सांस कार्यक्रम।

जी हाँ, दूसरे पास हो 4 MHz FM रेनबो तुम्हें साथ भाऊसंग तक रेनबो सांज है कारवी सवरा 30 मिनटा जायत आयिल्ली आसा. आयकुरावात कोंकणीतल्यो राष्ट्रीय खबरो बरोबर सवरा 30 मिनटाचेर.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जी हाँ दोस्तों, 7 वर 40 मिनट जो वे तुम्हें सद भाव संगतक तुम्हारी पसंती है कार्यविता नहीं आखिर ना आम चे संगतक पोया कौन साथे। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार
1: नमस्कार।
0: यस संतान,
1: या
0: संतान खची की जाए
1: कुर्बानी के लिए मिलते हैं।
0: ओके, सो पहला फिल्म है तुम्हें?
1: ऑफ कोर्स।
0: अच्छा, याद जाली पौन्या फिल्म आची?
1: हाय फिरोज खान।
0: हाय फिरोज खान सर, खूप सुंदर असा नाझिया खान हसनाचा आवाज तातून खूप सुंदरशी गीतांग दिलो असा। या डेफिनेटली त्यांच्या आवाजातले हे गीत खासा तुमच्या खातीर। ओके, थँक्यू,
1: बाय, गुड नाईट।
0: या सेशन आशिलो संतान, तुम्ही लगेच फोन मारा 222-4457 ह्या नंबरच्या तुमच्या आवडीचे संगीत आमच्याकडे ऐकू मगात।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने

0: प्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एजेंसी ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की 3री और 4थी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। डीएमआरसी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से इन मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया था। आज ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाई गई। एक रिपोर्ट।
1: आज पुरी का पवित्र शहर गहरी भक्ति भावना से सरोवर है, जब लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा देखी। पारंपरिक रस्में पूरे होने के बाद भाई बहन की ये मूर्तियां श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक अपनी पवित्र वापसी यात्रा पर निकली। सालाना रथ यात्रा का समापन नीलाद्री विजय रस्म के साथ होगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। उधर चीन के हांगझोऊ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि

0: आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत अधिकारी सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस महीने की 18 तारीख को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरोफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने बयान में बताया कि घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। पोत पर सवार अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। भारत और इसराइल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न किया। 20 से 23 जुलाई तक नई दिल्ली में चली वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और एक संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते की दिशा में प्रगति जारी रखी। अमरीका ने चीन, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन सहित 60 व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 12.5% तक का नया टैरिफ लगाया है। लगभग सभी अमरीकी आयातों पर लागू यह टैरिफ कल समाप्त हुए इसी तरह के शुल्क की जगह लेंगे। अमेरिका ने कहा है कि इससे उन देशों को निशाना बनाना है जो जबरन श्रम से निपटने में विफल रहे हैं। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुम्ही ऐकतात एफएम रेनबोचे प्रसारण। तसेच न्यूज ऑन एअर ह्या ॲपावरवी डिजिटल मोडाचेर तुम्ही ऐकतात एफएम रेनबो। आता रातची 12:05 जाऊन गेल्ली असात। आयच्या दिसापुरते आमचे प्रसारण आता बंद जाता। एफएम रेनबोच्या प्रसारणांत परती तुमची आमची भेट फाल्यां सकाळी 6 जातली। आयचे राती पुरतो आता आमकां निरोप दियात। शुभरात्री। जय हिंद।